ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, Bradford 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।

0: का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: Oh, yeah.

0: जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303, दैट्स ब्रेडफोर्ड 7230303।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।

नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dockworth Lane, Bradford 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।

0: मैं जानता हूँ तेरी आवाज बहुत सुरीली है।
1: मैं मुझे गाना नहीं आता।
0: अब नखरे मत कर, जब अपने बाप के लिए, रानी माँ के लिए, समीर बाबू के लिए गा सकती है, आज अपने पति देव को खुश करने के लिए भी गा। चल शुरू कर वरना मेरा हाथ उठ जाएगा।
1: गाती हूँ लेकिन दो घूंट और पिला दो, बड़ी प्यास लगी है।
0: तेरी प्यास तो मैं बाद में बुझाऊंगा, पहले तू मेरा दिल खुश कर, मुझे गाने सुना।

0: कफ्सन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 10 ब्रेडफोर्ड 7230 30।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ, जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे, जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-2522 पर कॉल करें।

0: कफन अफसेन जायकातुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 ब्रेडफोर्ड 7230303।

0: हवा के दोष पर उड़ते परिंदों के परों की ओट में और दुनिया के गोशे गोशे में सुनी जाने वाली आवाज ये आपके अपने सनराइज रेडियो की है जो कि 103.2 एफएम स्टूडियो पर और 100.6 एफएम पर पूरे वेस्ट यॉर्कशायर में सुनाई देती है। अगर आप डीएबी पे सुन रहे हैं तो आप हमें ब्रेडफोर्ड, कीतले, इल्कली, स्किप्टन, लीड्स, हैलिफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशायर, ब्लैकबर्न, बर्नले, डार्विन, नेल्सन, अक्रिंगटन, मिल्टन कीन्स में आप सुन सकते हैं। और अगर आप एप्पल ऐप स्टोर या फिर गूगल प्ले स्टोर पर भी सुनना चाहें तो आप हमें सुन सकते हैं और बहुत जल्द आप ढाबी में भी हमें सुन पाएंगे। अगर आप हमें वेबसाइट पर सुनना चाहें, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, तो आप हमें www.sunriseradio.fm पर पूरी दुनिया के कोने कोने में सुन सकते हैं। आमिर शहजाद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हम उम्मीद रखते हैं जहां तक हमारी आवाज पहुंची होगी आप सबको खैरियत के साथ पाया होगा। अगर खुदा न खास्ता आप बीमार हैं तो हम दुआ करते हैं अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। साथ में ये भी दुआ करते हैं अल्लाह पाक आप सब की मांगी गई हर दुआ कबूल और मंजूर फरमाए, हमेशा आप पर रहमतों और बरकतों का नजूल फरमाए, आपको सदा खुश रखे, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे और इंसानों की मोहताजी से बचाए। तो दोस्तों प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप हमारा साथ निभाएंगे और हमारा और आपका साथ है जनाब दो बजे तक मिले जुले गीत होंगे, आपकी डेडिकेशन होगी। तो दोस्तों प्रोग्राम को शुरू करते हैं हिट ऑफ द आवर के साथ और हिट ऑफ द आवर का गीत प्ले करने से पहले आपको जनाब एक छोटी सी इवेंट्स डायरी सुनाएंगे ताकि आपको पता चले आपके शहर में और गिरदोनवा में क्या हो रहा है। तो चलते हैं दोस्तों, पहले छोटी सी इवेंट्स डायरी सुनते हैं उसके बाद आप सुनेंगे हिट ऑफ द आवर।
1: Ahead over the coming days, here's what's happening across Yorkshire and beyond. First in Bradford, rumours of Fleetwood Mac comes to St George's Hall on Monday the 18th of May, bringing a live celebration of Fleetwood Mac's greatest hits. Also in Bradford, comedian and psychic medium Clinton Baptiste brings his Spectral Intercourse Tour to St George's Hall on Friday May 15th. Over in Calderdale, K-pop Fantasy comes to the Victoria Theatre in Halifax on Sunday May 17th, bringing high energy choreography and live vocals to the stage. And still in Calderdale, Frankie's Guy's 10th anniversary tour is at the Victoria Theatre on Friday 15th of May, celebrating the music of Frankie Valli and the Four Seasons. In Leeds, Peter Kay Live continues at the First Direct Bank Arena with more performances from his latest tour. In Manchester, Bank of Dave the Musical continues at the Lowry in Salford, telling the true story of Burnley businessman Dave Fishwick through music and comedy. Over in East Lancashire, Ian McNab performs live at Darwin Library Theatre on Friday 15th of May. And finally, in Milton Keynes, Al Murray, All You Need Is Gov, comes to Milton Keynes Theatre on Sunday 17th of May. And that's your Sunrise Radio event diary.
2: My favourite radio station, Sunrise Radio.
3: I always listen to Sunrise Radio and now I can listen on the move via the Sunrise

ने हिताब दावर सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। प्यारा सा गीता आप प्यारे दोस्तों के लिए पेश किया और प्रोग्राम में फोन करने का शुक्रिया हीरा खान साहब। जनाब आपके नाम करेंगे गीत, आने वाला प्यारा सा गीत है आपकी जन्म से, आपके दोस्तों के नाम करेंगे। नसरीन साहबा फोन करने का शुक्रिया, आपके नाम भी करेंगे इस गीत को। और उसके बाद तारिक जुल्फी साहब आपने भी फोन किया, शुक्रिया फोन करने का जनाब, आपके नाम भी करेंगे। और आप सुनना चाहते हैं अपने दोस्तों के लिए, स्पेशली जनाब मलिक इसहाक साहब के लिए सुनना चाहते हैं तो उनके नाम भी करेंगे। और वाजिद भाई हडर्सफील्ड से आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का, ये आने वाला गीत आपके नाम भी करूंगा। और उसके बाद जरीना साहबा आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का, आपके नाम भी ये गीत करेंगे। और उसके बाद इसी गीत को नज़र करना चाहेंगे जनाब, इस वक्त काफ़ी सहेलियाँ काम कर रही हैं, नजमा साहबा हैं, इफ़त है, नाजिया हैं, हमीदा, रुबीना, बुशरा, इकरा, ताजीम, जाहिदा और साहिमा जी। और इसके साथ ही जनाब मलिक इम्तियाज साहब आपकी पूरी टीम के नाम करेंगे, इकमाज के नाम करेंगे, मुनीर साहब, वसीम साहब, इमरान साहब, मुजाहिद साहब, अल्लाह दिता, हुमैर, बाबर और इफराज के नाम करेंगे। और उसके अलावा मुदस्सर कियानी साहब आप भी फ़ोन कर रहे हैं जनाब, शुक्रिया मुदस्सर कियानी साहब फ़ोन करने का, आपके नाम भी इस गीत को करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को और इसी गीत को मुना जी आपके नाम करेंगे।

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। आप यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और इसके साथ ही चलते हैं, टाइम चेक करते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: जी दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां जो है वो बता रही हैं 11:45, यानी कि 11:45। तो जनाब कमर्शियल की जानब चलेंगे। कमर्शियल के बाद एक सदाबहार पुराना गीत होगा। रफ़ी साहब का, मुदस्सर कैनी साहब आपके नाम, हीरा खान साहब शुक्रिया फिर फ़ोन किया आपने, आपके नाम। और तारिक ज़ुल्फ़ी साहब वाजिद भाई एडर्सफील्ड से, और जनाब सफ़ीउल्लाह भाई और दीगर तमाम दोस्त जो इस वक्त सुन रहे हैं, रेडियो को सुन रहे हैं, चौधरी मुजफ्फर साहब हैं, चौधरी मिनी साहब चक्की वाले हैं, महबूब अल्लाही साहब हैं, और दीगर तमाम दोस्त हैं जो इस वक्त अमजद हकीम भट्टी साहब हैं। तो इन दोस्तों के नाम तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
4: Looking for your dream home in Bradford?
5: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
4: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
5: Bellevue Residences.
4: Luxury, space and style.
5: Call 01274288252 today to arrange your viewing.
6: Thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.
7: The Classic Flashback is brought to you by Chacha Jewelers Bradford. Choose from a wide range of jewelry. Chacha Jewelers, 97-99, Oak Lane, Manningham, Bradford. BD94QU. Call 01274-488-935.

जी दोस्तों, अभी आपने रफी साहब की बहुत ही प्यारी सुरीली आवाज में एक प्यारा सा गीत सुना। यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। दोस्तों चलते हैं अब अगले गीत की जानिब, और ये गीत हमें ले जाएगा खबरों तक, बल्कि खबरों के करीब हमें ले जाएगा। तो सुनते हैं इस गीत को, एंजॉय करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं।

जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है। और दोस्तों प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आगे हैं। उम्मीद रखते हैं प्रोग्राम का पहला हिस्सा आप साथियों ने पसंद किया होगा और कोशिश होगी इस आवर में आपके लिए अच्छे और प्यारे से गीत पेश करने की।

0: जो है वो कोशिश करें। तो दोस्तों प्रेम को शुरू करते हैं हिट ऑफ द आवर के साथ, और हिट ऑफ द आवर का गीत जो है आप दोस्तों के नाम करूंगा जो इस वक्त सन्ना रेडियो की नशरियात को सुन रहे हैं। थोड़ा सा पुराना गीत है लेकिन काफ़ी अरसा हो गया इस गीत को मैंने अपने प्रोग्राम में शामिल नहीं किया, तो सोचा चलिए इसको हिट ऑफ द आवर की शक्ल में ही पेश कर देते हैं। तो उम्मीद रखूंगा कि आप सभी दोस्त जो हैं इस गीत को पसंद करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं दो प्यार भरी आवाज़ों में ये प्यारा सा गीत अमित कुमार और मेरे ख्याल में अनुराधा पौडवाल है उनके साथ। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं। सरफराज भाई आप भी फ़ोन कर रहे हैं, शुक्रिया फ़ोन करने का, और आपके नाम भी करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आपको भी ये गीत अच्छा लगेगा। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं हिट ऑफ द आवर, उसके बाद मिलते हैं।
1: Sunrise Radio, hit after hit, the hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio, hit of the hour.

0: जी दोस्तों, अभी आपने हिट ऑफ द आवर सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। इसके साथ ही चलते हैं टाइम चेक करते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों इसके साथ ही कमर्शियल की जानिब चलेंगे। टाइम हो गया है 12:14, यानी कि 14:12, और इसके साथ ही कमर्शियल का टाइम हो गया है। कमर्शियल के बाद एक प्यारा सा गीत होगा। सोनिया बहन, फ़ोन करने का शुक्रिया, बर्मिंघम से आपने फ़ोन किया। और अभी हमें किसी ने मिस कॉल दी, आखिरी डिजिट हैं 812, और इनका नाम रजिस्टर नहीं। आप दोबारा फ़ोन कीजिएगा ताकि मुझे पता चले आप कौन हैं, तो फिर मैं आपके नाम गीत करूं। और ये गीत प्यारी बहना सादिया जी, आजरा जी आपके नाम भी, और साइमा जी आपके नाम भी, और दीगर तमाम दोस्तों के नाम।

नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dockworth Lane, Bradford 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।

जी दोस्तों, अभी आप अलका याग्निक और उदर नारायण को सुन रहे थे। एक बार फिर अलका याग्निक और उदर नारायण को सुनते हैं। प्यारा सा गीत है, क्योंकि इस वक्त प्यारे से लोग प्रोग्राम को सुन रहे हैं। गजाला साहिबा, आप जनाब मैनचेस्टर में प्रोग्राम सुन रही हैं, घर में पेंटिंग भी हो रही है और साथ में रेडियो को भी सुना जा रहा है, तो आपके नाम भी करेंगे। शुक्रिया प्रोग्राम सुनने का और प्रोग्राम में हिस्सा लेने का। आपके नाम ये आने वाला गीत और आपके साथ साथ इसी गीत को नज़र करना चाहूँगा जनाब अमरीन साहब, आपके शाहीन बहना आपके नाम करेंगे और आपके साथ साथ दीगर तमाम दोस्तों के नाम करेंगे जो इस वक्त सनराइज रेडियो की नशरियात को सुन रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

बहुत ही प्यारा सा गीत दोस्तों अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में आप दोस्तों के लिए पेश किया। और अब कुमार सानू को सुनते हैं जनाब, काफी देर से उदित नारायण को सुन रहे हैं, तो अब चलेंगे सुनेंगे कुमार सानू को।

आंखों के मेरी नींद चुरा कर न जाइए। कुमार सानू की मत भरी आवाज में दोस्तों आपने प्यारा सा गीत सुना, और अब जनाब एक और प्यारे गीत की जानिब चलते हैं। आप दोस्तों के नाम करते हैं, जहां कहीं भी हैं आप प्रोग्राम को सुन रहे हैं, सनराइज रेडियो को सुन रहे हैं, तो आपके नाम करेंगे ये जनाब थोड़ा सा स्वीट सा गाना, प्यारा सा गाना, बड़ी प्यारी मौसीकी के साथ। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं दो प्यार भरी आवाज़ों में ये प्यारा सा गीत, और इन्जॉय कीजिएगा, इस गीत को, इन्जॉयबल है।

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और अब चलते हैं अगले गीत की जानिब। चौधरी मुजफ्फर साहब, शुक्रिया फ़ोन करने का जनाब, अच्छा लगा आपने फ़ोन किया। और जनाब आपके लिए पहले दो तीन गाने लगा चुका हूँ मेरे भाई के लिए, और मैंने सोचा आज भाई छुट्टी पे है, घर है, तो मुश्किल ही है टाइम निकालें कि फ़ोन करें। बरकैफ आप अपने दोस्तों के लिए गीत सुनना चाहते हैं जिनमें चौधरी आसिफ रियासत, चौधरी फरियाद साहब, महबूब इलाही साहब, तारिक जुल्फी साहब, जावेद मीर भाई, तारिक भट्ट साहब, शकील भाई भरले वाले, हीरा साहब और चौधरी मोहम्मद उस्मान साहब, सफ़ीउल्लाह साहब, वाजिद भाई अडसवील वाले, अयूब चौहान साहब, चौधरी मनीर चक्की वाले, शरफद्दीन साहब, पापा शफीक साहब, सलीम साहब उर्फ रफ़ी साहब, अधिका जी और अतिका जी और जंगीर भाई रीजबरी वाले, उनके लिए भी आप गीत सुनना चाहते हैं। तो जनाब आपके दोस्तों के नाम चौधरी मुजफ्फर साहब, उसके बाद सीमा जी, आपने फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का। आप सिमरन जी के लिए गीत सुनना चाहती हैं तो आपके नाम करेंगे। आने वाला गीत प्यारा सा गीत है, उम्मीद रखूंगा आप ज़रूर इसे एंजॉय करेंगी। और उसके बाद इसी गीत को साइमा जी आपके नाम भी करेंगे, और प्यारी बहना सादिया जी, आजरा जी आपके नाम भी करेंगे, और आपके साथ साथ वाजिद भाई एडसफील से आपके नाम। तो चौधरी मुजफ्फर साहब ने फ़ोन आपने गाना कर दिया जनाब, तो फ़ोन करने का शुक्रिया वाजिद भाई। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं ये प्यारा सा गीत और इन्जॉय करते हैं इस गीत को।

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और अब जनाब वक्त जो है वो टाइम चेक का हो गया है, तो टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: हाँ दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 12:45, यानी कि 45 मिनट पास 12। और अब जनाब वक्त हमें बता रहा है कि कमर्शियल का टाइम हो गया है। कमर्शियल के बाद जो है वो सदाबहार पुराने गीत की बारी आएगी, तो हम चलेंगे अब सुनेंगे कमर्शियल के बाद ये प्यारा सा गीत, और उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं। और ये गीत किसके नाम होगा? हीरा खान साहब, शुक्रिया फोन करने का। आपने कहा कि आप ताजी जुल्फी साहब के लिए, चौधरी मुजफ्फर साहब के लिए, चौधरी फरियाद साहब के लिए और आयूब चौहान साहब के लिए गीत सुनना चाहते हैं, तो उनके नाम करेंगे जनाब। और उसके बाद इसी गीत को नजर करना चाहेंगे जनाब सीमा जी आपके नाम, और अमरीन साहब आपके नाम, सोनिया बहन आप बर्मिंघम में सुन रही हैं आपके नाम, और गजाला साहब आप मैनचेस्टर में सुन रही हैं आपके नाम, और उसके बाद मुदस्सर कियानी साहब और जनाब दीगर जो दोस्त इस वक्त सनराइज रेडियो की निशात को सुन रहे हैं, चौधरी मुनीर साहब, चक्की वाले महबूब इलाही साहब, सफीउल्लाह भाई, सभी दोस्तों के नाम होगा। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल। और ताज दुखी साहब आप भी फ़ोन कर रहे हैं जनाब, आपके नाम भी करेंगे। और हमें फ़ोन किया जनाब जो तीन शहजादे बाबर शाह पे काम कर रहे हैं, सिकंदर अली, आपने फ़ोन किया, शुक्रिया। आपने कहा कि आप एक प्यारा सा गीत सुनना चाहते हैं बशारत अली और आरिफ अली के लिए, और साथ में ही आप गीत सुनना चाहते हैं जनाब। इस वक्त आपके साथ बैठे हुए हैं अब्बास अली, जो कल पाकिस्तान जा रहे हैं जनाब। और अब्बास अली साहब, पाकिस्तान जाइए, यहाँ की अच्छी अच्छी यादें लेकर जाइए, और इन यादों को मद्देनज़र रखते हुए जल्दी ही लौट आइए जनाब, क्योंकि आपको बहुत मिस करेंगे ये जो शहजादे हैं ना, बशारत अली, सिकंदर अली, आरिफ अली, ये आपको बहुत मिस करते हैं और बहुत प्यार करते हैं आपसे। तो जनाब जल्द ही लौट आइएगा, और अल्लाह आपको खैरियत के साथ अपनी मंजिल मकसूद अपने वतन में पहुँचाए और खैर से वापस ले आए। तो जनाब आपके नाम गीत, और चौधरी साकिब साहब आप भी यहाँ वहाँ बैठे हुए हैं, और आपके लिए भी ये तीन शहजादे गाना सुनना चाहते हैं चौधरी साहब। तो चौधरी साकिब साहब कबूल कीजिएगा इस गीत को, और आपके साथ दीगर तमाम दोस्तों के नाम भी करते हैं इस गीत को। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, छोटी सी कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद गीत, उसके बाद मेरी और आपकी जनाब मुलाकात होती है, सुनते रहिएगा।

अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-2522 पर कॉल करें।

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। एक और अब टाइम बड़े नाजुक मोड़ पे है, तो थोड़ा सा ये गीत एंजॉय कीजिएगा।

जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है और प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से में आगे हैं जनाब। और उम्मीद रखते हैं प्रोग्राम के दो हिस्से आप दोस्तों ने पसंद किए होंगे। साथ निभाने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद रखूंगा प्रोग्राम के आखिर तक आप हमारा साथ निभाएंगे। तो दोस्तों प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से को शुरू करते हैं हिट ऑफ द आवर के साथ, दो प्यारी सी आवाजों के साथ, सिन्हा पंत और उदय नारायण की आवाजों में।

0: सिमरन जी आपने फोन किया, आप सीमा जी के लिए गीत सुनना चाहती हैं, तो उम्मीद रखूंगा कि इस गाने के बाद जब मैं कोई और गाना लगाऊंगा जो आपके नाम करूंगा, उस वक्त आप भी गाड़ी में होंगी, सुन रही होंगी और या शायद ना सुन रही होंगी, लेकिन प्रॉमिस करता हूं कि इस गाने के बाद, हिट ऑफ द आवर के बाद आपके लिए ज़रूर कोई गीत लगाऊंगा। तो जनाब आने वाला गीत थोड़ा और टाइप का है, बरकफ आप इसे कबूल कीजिएगा, इंजॉय कीजिएगा सिमरन जी और सीमा जी और ताज दुखी साहब और इमरान साहब, आपने भी ब्रेडफोर्ड से फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का, आपके नाम भी करते हैं ये हिट ऑफ द आवर और सभी सुनने वालों के नाम करते हैं हिट ऑफ द आवर। ये थोड़ा मुख्तलिफ टाइप का गीत है, किसी का सज्जन गार आ गया है तो उसके बारे में है जनाब। तो चलेंगे सुनेंगे हिट ऑफ द आवर और सभी दोस्तों के नाम।
1: Of the hour brought to you in association with National Property Lawyers, one trusted team for your property and legal needs. Call 01274 559 565.

0: जी दोस्तों, अभी आपने मस्ती भरा हिट ऑफ द आवर सुना। यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। इसके साथ ही चलते हैं, टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां जो हैं वो बता रही हैं 1:13, यानी कि 13 मिनट्स पास्ट 1। तो चलते हैं जनाब, आपको कमर्शियल की जानब ले चलते हैं, और कमर्शियल के बाद एक प्यारा सा गीत होगा। सिमरन जी, आपने फ़ोन किया था, आप जनाब अपनी प्यारी सहेली सीमा जी के लिए गीत सुनना चाहती थी, उनके नाम करेंगे, और इसी गीत को चौधरी मुजफ्फर साहब आपके दोस्तों के नाम करेंगे, प्यारी बेना सादिया जी आजरा जी आपके नाम करेंगे, और इसी के इसी गीत को नज़र करना चाहेंगे जनाब। इस वक्त प्रोग्राम सुन रही हैं नजमा साहबा, इफ़त, नाजिया, अमीदा, रुबीना, बुशरा, इकरा, तज़ीम, जायदा, साइमा आपके नाम भी करेंगे, और अमरीन साहब आपके नाम भी करेंगे, और दीगर तमाम दोस्तों के नाम करेंगे। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल, छोटी सी कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद जनाब हम सुनेंगे एक प्यारा सा गीत, उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं।
2: My favorite radio station, Sunrise Radio.
3: I always listen to Sunrise Radio, and now I can listen on the move.

0: नफ्सेन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 10 ब्रेडफोर्ड 7230 30।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना काजल आमिर खान की आवाज़ों में और सुनिधि चौहान और जनाब सोनू निगम की आवाज़ों में। हाँ तो दोस्तों, अब चलते हैं अगले गीत की जाने। प्यारा सा गीत है आप प्यारे दोस्तों के लिए और मेरी जानिब से ये गीत सभी सुनने वालों के नाम करूँगा।

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना और अब जनाब चलेंगे आपको एक गजल सुनाते हैं जनाब गुलाम अली की, क्योंकि ये गजल बड़ी दफा आपने प्रोग्राम में शामिल की और जब भी शामिल करते हैं तो दोस्त बड़े खुश होते हैं। और अभी जनाब मलिक इम्तियाज साहब, आपने फ़ोन किया, शुक्रिया जनाब। ये गज़ल आपकी जानब से इकमाज, मुनीर, वसीम, इमरान, मुजाहिद, अल्लाह दिता, मेहर, बाबर और इफ़राज के नाम करेंगे और यही गज़ल जो है फेवरेट है हमारी प्यारी बहना सादिया जी की और आजरा जी की, उनके नाम भी करेंगे और यही गज़ल फेवरेट है नजमा सबा आपकी, आपकी सहेलियों की, स्पेशली इकरा जी की ये फेवरेट गज़ल है। तो आप इन इकरा जी के लिए, इफ़त के लिए, नाजिया के लिए, उम्मीदा के लिए, रुबीना के लिए, बुशरा के लिए, ताजीम के लिए, जायदा के लिए सुनना चाहती हैं, उनके नाम भी करेंगे। और बेसिकली ये गज़ल इसलिए प्ले कर रहा हूँ कि हमें रजवान भाई ने फ़ोन किया और कहा कि यार मन कर रहा है ये गज़ल सुनने को, तो आमिर भाई, मैंने कहा जनाब कोई बात नहीं, क्योंकि ये बड़े शौक़ से मैं अपने प्रोग्राम में इस गज़ल को जो है वो पेश करता होता हूँ और अच्छा किया आपने याद दिला दी और मेरा भी मन कर रहा है सुनने को यार। तो रजवान भाई बहुत शुक्रिया आपकी पसंद की गज़ल आपके नाम, और इसी गज़ल को जनाब चौधरी मुजफ्फर साहब और जनाब इमरान भाई ब्रेडफोर्ड वाले हैं उनके नाम, ईरा खान साहब के नाम और जनाब इसी गज़ल को मुदस्सर कियानी साहब आपके नाम और चौधरी रुखसार अहमद साहब मैनचेस्टर में उनके नाम और आसिम भाई जो हैं ओल्डम में उनके नाम भी करते हैं और दीगर तमाम दोस्तों के नाम करेंगे। और तीन शहजादे बाबर शाह पे काम कर रहे हैं, बिशारत अली, सिकंदर अली, आरफ अली, उनके नाम भी करेंगे और यकीनन अभी तक उधर अब्बास अली भी होंगे और चौधरी साकब भी होंगे, उनके नाम भी करेंगे और दीगर दोस्तों के नाम भी करेंगे। तो जनाब चलेंगे सुनेंगे इस प्यारी सी गज़ल को और हमारे प्यारे साथी जनाब जनाब तैमूर भाई भी फ़ोन करना लग गए हैं कि उनके नाम भी करूं। तो जनाब तैमूर भाई आपके नाम भी करते हैं जनाब, क्यों नहीं आपके नाम करेंगे, आप तो हमारे बहुत प्यारे साथी हैं, पुराने दोस्त हैं हमारे और पुराने साथी हैं। तो जनाब पुराने साथियों को तो बंदा कभी नहीं भूलता, आप भी नहीं भूलते, आपका बड़ापन है, आप कभी ना कभी हमें अपनी याद दिला ही देते हैं कि जनाब हम भी सुन रहे हैं आपको, तो अच्छा लगता है आप दोस्तों से बात करके। और आपके नाम भी करूंगा और दीगर जो दोस्त इस वक्त सनराइज रेडियो की नशरियात को सुन रहे हैं उनके नाम भी करेंगे। और इसके अलावा जनाब हम ये गज़ल जो है ये स्पेशली चौधरी मुनीर साहब चक्की वाले हैं उनके नाम भी करेंगे और महबूब अलाई साहब हैं उनके नाम भी करेंगे। तो जनाब चलते हैं सुनते हैं ये गुलाम अली की आवाज़ में जनाब अपने प्यारी सी गज़ल जो है ये प्ले करते हैं। तो चलिए जनाब इंजॉय कीजिएगा, बातें बाद में भी होती रहेंगी। प्यारी सी गज़ल जो है, क्योंकि बता दिया ये गज़ल गुलाम अली की है, तो काफ़ी दोस्त बेचैनी से इंतज़ार कर रहे होंगे कि आमिर भाई बातें रोकिए, आप गज़ल भी सुनाइए। तो चलते हैं सुनते हैं गुलाम अली को।

0: की है। जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारी सी गजल सुनी और तैमूर भाई आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, दिल को बड़ा सुकून हुआ जनाब। अल्लाह आपको सलामत रखे, हंसते मुस्कुराते रखे, बड़े प्यारे दोस्त हैं आप हमारे, तो आपसे आपके लिए दिल से ढेर सारी दुआ निकलती है। आप इसी तरह बात करते रहा करें, ज़िंदगी का भरोसा नहीं होता मेरे भाई। और पुराने दोस्त जो होते हैं, जब वो बात करते हैं तो बड़ा सुकून सा जो है वो दिल को होता है। और यकीनन जिस तरह मुझे सुकून हुआ बात करके आपसे, आपको भी ऐसे ही फील हुआ होगा, तो अच्छा होता है रابطہ रखे बंदा। तो बहुत प्यारे हैं आप, अल्लाह आपको सलामत रखे। और दोस्तों अब ताज दुखी साहब आप फ़ोन कर रहे हैं, क्योंकि अब कोई गाना नहीं होगा तो मैं आपकी कॉल भी नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि मैं बातें कर रहा हूँ ऑन एयर। तो शुक्रिया फ़ोन करने का, आज आपने प्रोग्राम में दो बार फ़ोन किया, बहुत अच्छा लगा। और अब कमर्शियल के बाद एक सदाबहार पुराने गीत की बारी आएगी, तो वो तैमूर भाई आपके नाम करेंगे, ताज दुखी साहब आपके नाम करेंगे। और प्यारी बहना जीत कौर, आपने भी फ़ोन किया, माफ़ चाहते हैं आपकी कॉल नहीं मैं ले पाया। आप समझ गई होंगी मैंने क्यों नहीं आपकी कॉल ली, तो जनाब आपने फ़ोन किया, शुक्रिया। और उसके बाद हीरा साहब, तारिक जुल्फी साहब, चौधरी मुजफ्फर साहब और जनाब वाजिद भाई एडर्सफील्ड से और दीगर तमाम दोस्त जो इस वक्त सन्ना रेडियो की निशात को सुन रहे हैं, मुदस्सर कियानी साहब हैं और जनाब जो सफ़ीउल्लाह भाई हैं उनके नाम भी करेंगे, महबूब इलाही साहब, चौधरी मुनीर साहब चक्की वाले उनके नाम करेंगे। तो ये करेंगे गीत बाद में, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि वक्त हो चुका है जोहर की अजान का, तो चलेंगे सुनेंगे जोहर की अजान, उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं, सुनते रहिएगा।
1: ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।
2: अल्लाह

0: ये अजान ब्रेडफोर्ड के वक्त के मुताबिक पेश की गई। जी सामीन, अभी आपने जोहर की अजान सुनी और इसके साथ ही वक्त जनाब जो है वो हो चुका है कमर्शियल का, तो चलेंगे पहले टाइम चेक कर लेंगे।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 1:44 से, यानी कि 44 मिनट्स पास्ट 1। तो जैसा कि मैंने कहा कि कमर्शियल का टाइम हो गया है जनाब, और कमर्शियल के बाद जो गीत होगा, ताज दुखी साहब आपके नाम होगा, जीत कौर भैना आपके नाम होगा, तैमूर भाई आपके नाम होगा, मलिक इम्तियाज साहब आपकी पूरी टीम के नाम होगा, इमरान भाई और हीरा खान साहब, चौधरी मुजफ्फर साहब और जनाब तारिक जुल्फी साहब, मुदसर कियानी साहब और जनाब वाजिद भाई अड्डा स्पीड वाले, और महबूब इलाही साहब, चौधरी मुनीर साहब चक्की वाले, और उसके साथ साथ जनाब साइमा जी आपके नाम करेंगे और दीगर तमाम दोस्तों के नाम करेंगे जो इस वक्त सन्ना रेडियो की निशरात को सुन रहे हैं और इसी गीत को तीन शहजादे बाबर शाह पे काम कर रहे हैं, बिशारत अली, सिकंदर अली, आरफ अली, उनके नाम भी करेंगे। बड़ा प्यारा गीत है, आप सभी दोस्तों के नाम करेंगे कमर्शियल के बाद, तो सुनिएगा और एंजॉय कीजिएगा गीत को।
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
4: Looking for your dream home in Bradford?
5: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
4: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
5: Bellevue Residences.
4: Luxury, space and style.
5: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और अब जनाब चलते हैं अगले गीत की जानेब। और ये गीत भी बहुत ही प्यारा है। और हम चाहेंगे जितने भी दोस्त इस वक्त सनराइज रेडियो की निशरात को सुन रहे हैं, उन सब के नाम करेंगे। नाम किसका जोड़ूंगे इसके साथ। प्यारा सा गीत है। अमूमन मैं अपने प्रोग्रामों में इसको इस्तेमाल करता रहता हूँ, लगाता रहता हूँ आप दोस्तों के लिए। तो जो है आज सोचा कि चलिए इस गाने को फिर जो है वो प्ले कर देते हैं। तो ये गाना जो है अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में है। तो आप दोस्तों के लिए हमने चुना। और गाना आप सोच रहे होंगे ये गाना कह रहा है लगा रहा हूँ, लगा तो नहीं रहा तो इसलिए कि वो गाना जो है ना वो मैंने क्यों करके रखा था तो वो उधर नोटिस नहीं लिया, वो गाना वो निकल गया था। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैंने उसे फिर दोबारा काबू कर लिया है। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। आप सभी दोस्तों के नाम करूंगा जो इस वक्त सन रेडियो की निशात को सुन रहे हैं। इंजॉयबल गीत है जनाब, आप ज़रूर इंजॉय करेंगे। अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में इसको

जी दोस्तों, अभी आपने अलका याग्निक और कुमार सानू की मत भरी आवाजों में आपने प्यारा सा गीत सुना। और दोस्तों, इसी के साथ ही मेरे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पसीर हुआ चाहता है। उम्मीद रखते हैं आज का प्रोग्राम आप दोस्तों को पसंद आया होगा। साथ निभाने का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आप मुझे आमिर सलात को इजाजत दीजिएगा। अगर अल्लाह ने चाहा और जिंदगी ने वफा की तो आपके साथ मेरी मुलाकात कल सुबह 11:25 पे होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह निगबान एंड गुड बाय।

0: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
1: Looking for your dream home in Bradford?
2: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
1: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
2: Bellevue Residences.
1: Luxury, space and style.
2: Call 01274-288-252 today to arrange your viewing.
3: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio. Hit of the hour.

हवाओं के दोष पर एक पैगाम भेजा है, हवाओं के दोष पर एक पैगाम भेजा है, तसव्वुर के हाथों एक पयाम भेजा है, लम्हा फुर्सत हो तो कबूल फरमाइएगा, इस नाचीज ने प्यार से सलाम भेजा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल और आदाब अर्ज करती हूँ। एंड ऑफ कोर्स अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। सामीन, आप समात फरमा रहे हैं सनराइज रेडियो की नशरियात ऑन 103.2 एफएम पर। उसके अलावा आप सुनते हैं 100.6 एफएम इन कैल्टडेल एंड सराउंडिंग एरियाज। डीएबी पर आप हमें सुनते हैं इन ग्रेटर मैनचेस्टर और सराउंडिंग एरियाज में। और सोशल मीडिया पर आप हमें फॉलो भी करते हैं, जैसे कि ट्विटर, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब एक्सेट्रा। हमारी अपनी ऐप डाउनलोड करते हैं आप फ्री ऑफ चार्ज फ्रॉम ऐप स्टोर या गूगल प्ले, उसके जरिए प्रोग्राम सुनते हैं। ऑफ कोर्स हमारे स्टूडियो का नंबर डायल करके बराए रास्त आप हमसे गुफ्तगु भी करते हैं। नंबर तो आपको पता ही है ना, 01274306666। तो जनाब, मैं हूँ आपकी अपनी मेज़बान हुमैरा, रहूँगी आपके साथ, मेरा और आपका साथ बना रहेगा। और मैं उम्मीद करती हूँ गीतों के इस सफ़र में आप मेरे हम सफ़र बनकर मेरे साथ साथ रहेंगे।

अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-2522 पर कॉल करें।

जी हाँ सामीन, ऐसा है ना कि आप लोग का और हमारा जो सनराइज रेडियो की तवज्जो से जो रिश्ता बना है वो इतना खूबसूरत है। और मुझे सबसे बात अच्छी पता है क्या लगती है, देखिए यहाँ पर आप लोग अपना टाइम निकाल के जब हमें कॉल करते हैं, हम आपसे बात करते हैं, तो जो इंटरेक्शन हमारा है वो खूबसूरत तो है ही, लेकिन उसमें जो चीज़ मुझे पसंद आती है वो है एक अंसर है, और वो है आजजी का। जितना खुलूस और प्यार से आप लोग, एक आजजी आपके लहजे में जो होती है, यहाँ से मेरे लहजे में आपके लिए होती है, इट्स जस्ट सो ब्यूटिफुल, यू नो। एंड जब आजजी की बात ही चल निकली है तो मुझे एक खूबसूरत सा वाकया याद आ रहा है जो कि मैंने कहीं पढ़ा था, और उसको पढ़ते वक्त भी यकीन जानिए मैंने रिलेट किया था आप लोगों से, कि अगर मोहब्बत का, खुलूस का और आजजी का रिश्ता कहीं अगर उसकी मिसाल देनी हो, क्योंकि देखिए बात जब की जाती है ना तो लॉजिक के साथ की जाती है, उसमें दलील होती है, उसमें इतनी पॉजिटिव लॉजिक और दलील होती है कि सामने वाला जो है ना वो सुनते ही यकीन ले आता है, वरना इंसान को खामोश रहना चाहिए। अगर आपके पास एक पॉजिटिव लॉजिक और एक पॉजिटिव दलील नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है अपनी बात के साथ, तो जब मैंने ये पढ़ा उसी वक्त मैंने आप लोगों का सोचा और मैं आपके साथ शेयर भी करना चाहूँगी। हुआ कुछ यूँ था कि देखिए जो दूध पीते मूसा थे तो वो गर्क नहीं हुए, हालांकि वो अपनी कमज़ोरी के इंतहा पर थे, और फिरौन, हम सब जानते हैं कि फिरौन का दबदबा, फिरौन का जुल्म, तो वो गर्क हो गया हालांकि वो अपनी ताकत की इंतहा पर था। अब देखिए तकब्बुर, ईगो, गुरूर, हम सब जानते हैं, अब चाहे वो ताकत का हो, चाहे वो दौलत का हो, चाहे वो हुस्न का हो, इल्म का हो, हसब नस्ब का हो, हत्ता के तकब्बुर चाहे तकवा का ही क्यों ना हो, एक रिलीजियस इंसान भी अगर ये कहे कि भाई मुझसे ज़्यादा पायस कोई नहीं है, यहाँ पर क्या आ जाता है, तकब्बुर आ जाता है। फिर क्या होता है फिर बस वो इंसान को रुसवा करके ही छोड़ता है। इसीलिए ना हम सबको आजिज़ी इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि इंसान की अकड़ जो है ना वो खुदा की पकड़ पर ख़त्म हो जाती है। एंड इट मेक्स मी सो प्राउड टू से दैट ऑल ऑफ यू आर सनराइज रेडियो लिसनर्स, एक्चुअली हमारे फैमिली मेम्बर्स इतनी आजिज़ी और इनकसारी से बात करते हैं कि मैं तो क्या, रब भी सुन के ना खुश हो जाता होगा।

जी हाँ सामीन, तो उम्मीद करती हूँ कि ये गीत आपको पसंद आया होगा। अब क्या है ना कि ये देखिए, जो गीत होता है ना, वो इट्स एन अमैलगमेशन ऑफ मैनी इमोशंस पुट टुगेदर। अक्सर कहती रहती हूँ मैं ये बात आपको कि एक गीत में क्या नहीं होता, उसमें एहसास होता है, प्यार का इजहार होता है, उम्मीद होती है, यासियत होती है, शिकवा होता है, शिकायत होता है, दुख होता है, गम होता है। लेकिन हमें क्या लेना चाहिए, हमें पॉजिटिव लेना चाहिए। उसमें से उदासी जो है, अगर उसका आंसर हम निकाल दें और पॉजिटिव को हम अपने पास रख लें, तो देखिए इंसानी फितरत क्या है, जहाँ से हमें कुछ फ़ायदा होगा हम वहीं जाएंगे। अब आप मुझे खुद बताइए सामीन कि अगर गम आप लेते हैं उसमें से और दुखी हो जाते हैं या महसूस करते हैं, तो कुछ मिला नहीं मिला, है ना। अब जब उसमें से आप पॉजिटिव निकालते हैं ना, तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। मिलेगा ये कि और कुछ ना सही, आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट, एक तबस्सुम तो खिलेगा। अब एक बताइए कि एक तबस्सुम खिलने से कितने मसल्स हमारी अंदर इंसान के वो रिलैक्स हो जाते हैं, और जब वो रिलैक्स हो जाते हैं ना, तो सेरोटोनिन पूरे बॉडी में एक मैसेज भेजता है कि भाई रावी चैन ही चैन लिखता है। तो इस तरह से होता क्या है ना कि हम एक खुशी के उसमें आ जाते हैं मूड में। तो फ़ायदा हुआ कि नहीं। वैसे भी क्या खूब किसी ने कहा है कि कुर्बत से नाशनास रहे कुछ नहीं बना, कुर्बत से नाशनास रहे कुछ नहीं बना, खुश रंग खुश लिबास रहे कुछ नहीं बना, होंठों ने खुद पे प्यास के पहरे बिठा लिए, होंठों ने खुद पे प्यास के पहरे बिठा लिए, दरिया के आस पास रहे कुछ नहीं बना। और आखिर में क्या खूब कहा कि अब कह कहों से के साथ करेंगे इलाज इश्क, अब कह कहों के साथ करेंगे इलाज इश्क, हम मुद्दतों उदास रहे कुछ नहीं बना। तो देखा आपने कि उदास रहने से कुछ नहीं बनता। तो चले जल्दी से मेरे साथ एक कह कर लगाएं, मुस्कुराएं और हंस लें जल्दी से। हाँ

तो देखिए, उम्मीद करती हूँ कि जो गीत लगा था आपको पसंद आया होगा और महसूस हुए होंगे आप उससे। इसके अलावा ये है कि ऐसे बहुत सारे गीत हमारी पठारी में मौजूद हैं जो कि थ्रू आउट मैं लगाती रहूँगी, आपको सुनाती रहूँगी और महसूस करती रहूँगी।

0: कैप्टन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम, इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 ब्रेडफोर्ड 7230303।

0: कहीं तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

एक शेर तुहाड़ी नजर करदा हजूर। अज दी रात दी खबर दसा, अज दी रात दी खबर दसा, ख्वाब विच सोने आए हुए सन, बड़ी अदा नाल दिता जनाब बोसा, मस्ती विच अज खूब छाए हुए सन, दुख सुख दियां गल्लां खूब होईयां, बड़े अरसे दे दिल घबराए हुए सन, तको तकी अफजल अख खुल गई, जाम कौसर दे लबा नाल।

जी हाँ सामीन, वेलकम बैक। और प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा स्टार्ट हो चुका है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस हिस्से में भी अच्छे अच्छे गीत सुना के आप लोगों का दिल बहला सकूं। अब ये है ना कि मैं तो यहाँ से अपनी उम्मीद पर गीत लगाती हूँ कि आपको पसंद आएंगे। अब मुनसिफ तो आप ही हैं ना, आप ही बताएंगे कि गीत आपको कैसे लग रहे हैं।

0: नफ्सेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 10 ब्रेडफोर्ड 7230 30।

आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो की नशरियात ऑन 103.2 एफएम पर और मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट हुमैरा मेरा और आपका साथ रहेगा सनराइज रेडियो के तवस्सत से अच्छे अच्छे गीत सुन रहे हैं आप उम्मीद करती हूं कि आपको गीत पसंद आ रहे होंगे दोस्त की बात चल निकली तो इस हवाले से एक बहुत खूबसूरत बात मैंने कहीं पढ़ी और मेरा दिल कर रहा है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कहते हैं कि अच्छे दोस्त और दवाएँ दोनों हमारी ज़िंदगी में ना बहुत अहम है दोनों हमारे दर्द में कमी करते हैं फ़र्क सिर्फ इतना है कि दवाओं के बरक्स अच्छे दोस्त की ना कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती कितनी खूबसूरत बात है सामीन जो दोस्ती का रिश्ता है ना वो बहुत ही खूबसूरत रिश्ता होता है जैसे फैमिली मेम्बर्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारा सब कुछ होते हैं हमारी फैमिली राइट इसी तरह से दोस्त भी ना हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं

सामीन, तो क्या है ना कि आपका और हमारा जो साथ है ना, वो पता ही नहीं चलता कि कैसे टाइम गुजर जाता है। 2 घंटे हो 3 घंटे हो 4 घंटे हो मिनट में चले जाते हैं। ये सब आप लोगों की बदौलत होता है। मैं ये सोच रही थी जहन में कि देखिए, आप लोग के साथ टाइम इतना जल्दी निकल गया, ठीक है, और फिर ज़िंदगी जो हमारी है वो भी ऐसी ही है ना, कितना तेज़ी से भाग रही है और लगती है कि थोड़ी सी देर का खेल है सारा, थोड़ी सी ज़िंदगी है, तो क्यों ना हम हंसी खुशी गुजार लें, मिलकर गुजार लें, है ना। और जैसे किसी ने क्या खूब कहा कि तुर्की के एक आदमी का कहना था, उसने कहा कि मेरे मालिक मकान ने किराया बढ़ाया तो मेरी देने की गुंजाइश नहीं थी, लिहाजा उसने मुझे घर से निकाल दिया। फिर क्या हुआ, फिर जलजला आया, तबाही हुई और आज हम दोनों एक ही टेंट में रहते हैं। तो बस जान लो, इस दुनियाए फानी में हर खेल थोड़ी देर का है। तो बस थोड़ी देर के लिए हम आए हैं, इसी तरह थोड़ी देर हम यहाँ मिले हैं, हंसी खुशी टाइम गुजर जाए, उससे अच्छी बात और क्या होगी, है ना।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Looking for your dream home in Bradford?
3: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
2: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
3: Bellevue Residences.
2: Luxury, space and style.
3: Call 01274-288-252 today to arrange your viewing.
4: Sunrise and music.
5: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अब चाहे वो कोई गीत हो, कोई शायरी हो, कोई मेरी उठपटांग बातें हो, कोई वाकया स्टोरी, जो कुछ भी हो, अगर कहीं ना कहीं आपके चेहरे पर तबस्सुम खिला ना, यकीन जानिए वो मेरे वीक का हासिल होता है। तो जनाब ऐसा है कि इट्स अ रैप, दैट्स ऑल वी हैड टाइम फॉर। उम्मीद करती हूँ कि जब आइंदा हमारा प्रोग्राम होगा तो आप मेरा साथ इसी तरह निभाएंगे जैसे आपने अभी निभाया था। तो अब इस फाइनल नोट और इस फाइनल गीत के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगी कि लोगों को कहते सुना था कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लोगों को कहते सुना था कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन आप सबसे मिलकर महसूस हुआ कि मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। आपकी आज की मेजबान हुमैरा को इजाजत, अल्लाह हाफिज, रब राखा।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: सनराइज म्यूजिक।

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-21-21 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।

साड़ी दुनिया के तमाम पंजाबियों अपने वालों सत श्री अकाल कह रहा हाँ, कबूल करो इस खुशी के मौके से जिथे एडे जश्न मनाए जा रहे ने अज इंडी सगू वास्ते उसकी एक खूबसूरत पेशकश दे विच जो मेरा सब तो फेवरेट गीत है बाबियां दे चल चलिए।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: कुल्लो नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डारफील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रैडफोर्ड 7230300।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: कुल्लो नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डारफील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रैडफोर्ड 7230300।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनुवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

नशीं तुझसी नहीं कोई कहीं इस जहां में हसी पर्दा नशीं तुझसी नहीं कोई कहीं इस जहां